0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Want to reach your clients?
4: Want to wish your loved ones?
3: Ride the airwaves of Akashvani Northeastern Service
4: with attractive ads and promos.
3: A new business venture?
4: Or updating an existing one?
3: Wishes on special occasions?
4: Northeastern Service is here for you.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্ষন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी।

और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों का अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का

मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615 जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम

आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी स्टूडियो के घर पर 12:10 हुए हैं और हम आरंभ करते हैं सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर कार्यक्रम सबरंग। 1:40 पर गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम।

2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम गीतिका का और इसी के साथ हमारे आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

जी भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है न्यूयॉर्क फिल्म से केके की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे राजा हिंदुस्तानी फिल्म से एक गीत उदित नारायण की आवाज में। बोल है समीर के और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

हमारा अगला कार्यक्रम है बंदगी के गीत और भजन। लेकिन कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शनिवार है और रोजाने की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम एक और अनेक।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम गुंजन और 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम नजराना का और इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म का नाम है ज्योति।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं भक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम बंदगी के गीत और भजन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब सुनिए शारदा की आवाज में ये भक्ति गीत माँ बहन और बीवी फिल्म से।

और इसी गीत के साथ फौजी भाइयों, बंदगी के गीत और भजन कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। इस समय दिन के 1:05 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब से आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं मीडियम 529.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं सबरंग कार्यक्रम का पहला गीत लकीर फिल्म से शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

फौजी भाइयों, इन गीतों को आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सतरंग में आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग्ज्योतिषपुर और डिब्रूगढ़ केंद्रों से। आइए अब आपको सुनवाते हैं राजा फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। पेश है गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। कार्यक्रम का आगाज करेंगे बेगम अख्तर के गाए हुए इस गजल से।

आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम तरन्नुम। अब आइए सुनते हैं अगली गजल पंकज उधास की आवाज में। शायर है आनंद बख्शी।

और इसी के साथ फौजी भाइयों, तरन्नुम कार्यक्रम यही समाप्त होता है। इस समय दिन के 2 बजने को है। बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार।

0: सुरक्षित रह सके। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSP के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार

0: कक्ष दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
2: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
4: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा

0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
1: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतिका। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से।

शर्माए काहे घबराए काहे, सुन मेरे राजा ओ राजा आजा आजा आजा। शर्माए काहे घबराए काहे, सुन

है, आए देखो शर्माए का है, घबरा।

0: घबराए काहे, ओ शर्माए काहे, घबराए काहे, शर्माए काहे।
1: अब सुनिए फर्स्ट फिल्म से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत।

सैनिक भाइयों के लिए आज के प्रसारण का यही होता है समापन। अभी दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए निमिषा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। दोस्तों आप खुश तो बहुत होंगे ना, क्योंकि बारिश की ठंडी फुहार तन मन को भिगो रही है। प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है और एक नई ताजगी का एहसास है ना, और मन मयूर झूम उठा है।

जी दोस्तों, बारिश की रुमझुम रुमझुम, और ये जो बारिश की जो बूंदें हैं उन्हें छू करके एहसास ऐसा होता है कि सारे तन में, तन बदन में, तन मन में एक ठंडक सी पहुंच गई है। और उमस भरी गर्मी के बाद तो झमाझम बारिश के बाद तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पेड़ पौधों में हरियाली छा जाती है, नदी ताल तलैया पोखर सब लबालब भर जाते हैं। बरसात से राहत तो मिल जाती है लेकिन साथ साथ आफत भी आ जाती है। आफत, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आफत के नाम पे तो बाढ़ ही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें आ जाती हैं, कई सारी बीमारियां भी आ जाती हैं।

0: और वाटर बोर्न डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। जब ऐसी संभावना हो तो सावधानी और सतर्कता भी जरूरी है, ये तो आप सभी जानते हैं। उन बीमारियों के बारे में जानकारी लेना और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। तो उन सब के लिए हम है ना जी, हमारा रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है ना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी, आप डायरेक्टर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन मैक्स अस्पताल में। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपको।
1: धन्यवाद कमल जी।
0: और दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। बारिश का मौसम है तो नेचुरली, और रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम है तो हम बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डिजीजेस इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियां, इन सब के विषय में आज हम जानेंगे अपने डॉक्टर साहब से, यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक आप हमसे जुड़ते हैं, चलिए हम आपकी ओर से कुछ सवालात कर लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब,
1: कमल जी आज बहुत अच्छा दिन है, कबीरदास जी का दोहा याद आया मुझे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए
0: जी।
1: तो एज ए डॉक्टर मेरे लिए मेरे मरीज सबसे बड़े गुरु हैं। आज के दिन में हम श्रोताओं को गुरु मानते हैं, तो क्योंकि गुरु ही हमें मार्गदर्शन दिखाता है, श्रोता ही हमें बताते हैं कि हमें क्या क्वेश्चनों का जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। तो मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: तो डॉक्टर साहब, चूंकि ये बारिश का मौसम है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है, देखते हुए अच्छा लग रहा है, भीगते हुए कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार भीगने से और बार बार भीगने से कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती है उनका खतरा लगभग बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है?
1: देखिए, बरसात के मौसम को अगर हम डिवाइड करें तो एक एक करके जैसे अपन चलते हैं
0: जी,
1: तो सबसे पहले बरसात में जो होता है ह्यूमिडिटी, उमस,
0: यानी कि नमी,
1: नमी, उमस
0: जी,
1: उमस की वजह से जब आप, जैसे अगर बरसात अभी नहीं भी हो रही है एक्टिवली, तो भी जो मौसम है उसमें उमस बहुत ज्यादा होती है, उमस से पसीने बहुत ज्यादा आएंगे
0: जी।
1: तो ऐसे में हम अपने सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहेंगे कि आप जब इस तरह का मौसम आए, रेनी सीजन जैसा मौसम आए, तो बेटर है कि आप कपड़े जो है कॉटन के पहने, जो कि आपकी स्वेट को या जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर सके,
0: सोख सके,
1: क्योंकि अगर वो सोखेगा नहीं तो आपको स्किन डिजीजेस का सबसे ज्यादा कॉमन खतरा होता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि भीगे कपड़े होंगे तो फंगल इन्फेक्शन के डर होता है। तो शुरुआत में अगर हम ऊपर से शुरू करें तो स्किन इन्फेक्शन, किसी किसी को एलर्जी, इचिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती
0: है, फोड़े फुंसियां
1: शुरू हो जाएंगे, है ना। अगर कोई यंग बच्चे हैं तो उनके पिंपल्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं वो गर्मी के कारण।
0: अच्छा,
1: तो ये सब चीजें हमें गर्मी के मौसम में, अगर हम ऊपरी तौर से स्किन डिजीज की बात करें तो। फिर भीगने की वजह से अगर हम बात करें तो भीगने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा हो जाता है कि शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो आप जो कॉमन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जिसको खांसी जुकाम है ना, हल्का फुल्का बुखार आना, ये सब चीजें बहुत कॉमन होती हैं। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जो खराब पानी की वजह से होती हैं
0: जी,
1: खराब पानी की वजह से, जैसे कि जो पीने का पानी थोड़ा सा खराब हो जाएगा
0: है
1: ना, उसकी वजह से आंत्रशोध या एंट्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, अब इन्फेक्शन की वजह से हो जाएंगी। और फिर बाद में पानी के स्टैग्नेशन यानी पानी के रुकाव की वजह से जो मक्खी मच्छर जो पनपते हैं उनकी वजह से बीमारियां होती हैं
0: जी। जी,
1: तो इस तरह से हम बीमारियों का क्लासिफिकेशन या डिफ्रेंसिएशन करते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही और मैं उसे बड़े गौर से सुन रहा था, और कई बार हमने देखा भी है और कई बार ऐसा लगता भी है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बाहर से आए, बहुत ज्यादा गर्मी लगी है और उसके बाद में पसीना पसीना हो गए हैं, और उसके बाद में कुछ लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाकर के नहा लेते हैं, तो इससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, कौन सा खतरा बढ़ सकता है?
1: जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कमल जी, कि टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी कारण से अगर एकदम से होगा तो उसकी वजह से ना बॉडी का एडेप्टेशन कई लोगों का हो जाता है, कई लोगों का नहीं हो पाता।
0: अच्छा,
1: तो हम लोग जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि सपोज आप कहीं गर्मी से एकदम से आए हैं तो आप अंदर बैठिए, थोड़ी देर अपने पसीने सुखाइए, एक नॉर्मल पंखे में बैठिए, और जब पसीने सूख जाए और थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन हो जाए फिर उसके बाद आप बाकी काम कीजिए। जैसे कि एकदम से आते ही ठंडा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक है जी, अंदर आते ही एकदम से नहाना है, तो वो सब आपको थोड़ा सा एक्लिमेटाइज होके फिर करेंगे तो आपका शरीर जो है उसमें आपका साथ देगा और आपको कफ कोल्ड या जो किसी किसी को अगर आपने देखा होता है एकदम से ठंडा पानी पी लिया आपने गर्मी से आते एकदम से गला पकड़ जाता है, तीन चार दिन तक फिर खराश खांसी और गले में दर्द रहता है, तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर पाएंगे
0: जी। तो इसमें जब इस प्रकार से जब बिल्कुल गर्मी से बिल्कुल ठंडक यानी कि शरीर को ठंडक मिलती है तो और इसमें किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, क्या इसमें बुखार होने के, फीवर होने के भी चांसेस रहते हैं?
1: हाँ, देखिए बुखार कोई

0: बीमारी नहीं है। बुखार किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी शारीरिक प्रक्रिया की वजह से होता है, तो जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा तो वो बाहर जो दिखेगा वो बुखार के रूप में दिखेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे खांसी जुखाम की, तो खांसी जुखाम होगा तो आपके गले में ये जो जीभ के पीछे की जो जगह होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी किसी के नीचे छाती तक पहुंच जाता है,
1: खराश होने लगती
0: तो वो इन्फ्लेमेशन फीवर के रूप में प्रेजेंट करता है। तो बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का एक साइन है, एक रूप है बीमारी का,
1: लक्षण है। जी डॉक्टर साहब, वैसे बहुत सारी बीमारियां तो हैं, तो बरसात के मौसम में अगर सबसे पहले कभी कुछ हो जाता है तो सोचते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, तो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है?
0: सबसे बड़ा रिस्क तो जो कॉमन फ्लू होता है, जो हम कफ कोल्ड बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, जो कि बरसात के ऑनसेट के साथ ही स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और दूसरा जो होता है वो है एंट्राइटिस यानी आंत्रशोथ यानी पेट के इन्फेक्शन। अब वो कोलेरा की वजह से हो, चाहे टाइफाइड की वजह से हो, चाहे दूषित पानी का मिश्रण जो आपके पीने के पानी में है उसकी वजह से हो, ये अलग अलग इसके स्रोत हैं जिसकी वजह से हो सकता है। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि जो बरसात के पानी के साथ मिट्टी के रास्ते से नीचे, जैसे मिट्टी से पानी, बरसात का पानी एब्जॉर्ब होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, और वो प्यूरिफिकेशन अगर उसका ठीक से ना हो तो वो उसको हम लोग पैरासिटिक इन्फेक्शन बोलते
1: हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसे हम डायरेक्ट ना पिए, उसे छान कर पिए, उबाल कर पिए, तो ये कुछ हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है,
0: बहुत हद तक। अगर हम सबको बोलें कि भाई आप उबला हुआ पानी पीजिए, उबले हुए का मतलब होता है कि आप उसको रोलिंग बॉइल 20 सेकंड्स कम से कम अगर आप बॉइल करके पियेंगे तो आपकी ये जो पेट वाली परेशानियां हैं, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे।
1: जी, तो इसमें डॉक्टर साहब आपने कहा कि 20 सेकंड्स तक, इसमें भी कुछ टेम्परेचर अगर कुछ क्या कहते हैं,
0: रोलिंग बॉइल कहते हैं सर इसको, मतलब जब बॉइलिंग शुरू हो तब आप उसको 20 सेकंड लगिए।
1: अच्छा, तो यानी कि पूरी
0: कम से कम
1: 20 सेकंड तक बॉइल हो जाए, उसके बाद ठंडा करके पिए, या
0: हल्का ठंडा करके पिए।
1: तो हल्के हल्के कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो चाय की तरह फूंक फूंक के पीते हैं।
0: देखिए सर, ये आपकी क्या आदत है और आपको कैसे पसंद है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। हम ये एडवाइस करते हैं कि बॉइलिंग वाटर के बाद आप उसको ठंडा करके, चाहे आप साफ बोतल में रख के उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमारा पर्पस है कि आप जो बॉइलिंग वाटर से हमारा जो बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है वो मर जाएं, ताकि आपको इन्फेक्शन की मात्रा, इन्फेक्शन कम से कम हो।
1: जी तड़क साहब, यहाँ पर एक मैसेज हमारे पास आ गया है और इन्होंने लिखा है कि आपको यानी कि मुझे और डॉक्टर गुप्ता जी को गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब।
0: थैंक यू सर।
1: बरसात में बच्चों को नहाने का बड़ा शौक होता है, इन्होंने लिखा है, और ये कहते हैं कि बच्चे जानबूझकर भीगते हैं तो उनका डॉक्टर साहब क्या मार्गदर्शन करेंगे। ये लिखे हैं नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड से। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल चौहान साहब, बच्चों का तो सबसे बड़ा शौक बरसात में घूमना है और बरसात में भीगना है। आप उनका बचपन मत छीने, उनको घूमने दें, उनको विचरण करने दें बरसात में, लेकिन जैसी वो घर आते हैं सबसे पहले उनका जो काम होना चाहिए माँ बाप का वो है कि कपड़े चेंज करें, उनका सिर सुखाएं और उनको थोड़ी देर के लिए बिठा दें और फिर ही कुछ खाने या पीने को दें। अगर हम ये सब चीजें अगर करेंगे तो बच्चों को बीमारी का कोई दिक्कत नहीं है।
1: ये तो अच्छी बात बताई कि यानी कि शरीर भीगा नहीं होना चाहिए, बरसात में भीगने के बाद में उसको क्रोच करके सुखा देना चाहिए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब एक और
0: चीज कमल जी, कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चे अंदर आते ही एयर कंडीशन में बैठ जाते हैं, तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है।
1: ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों को भी करना चाहिए कि आते ही कहीं से गर्मी से आ रहे हैं तो तुरंत ही उसी समय एयर कंडीशन में ना बैठें, बच्चों को भी ना बैठने दें, बल्कि एक नॉर्मल पंखे की हवा से, अगर आपके पास पंखे हैं तो पंखे की हवा से अपने शरीर को सुखाएं, उसके बाद ही आगे का जो भी कार्य है खाना पीना है वो करें। डॉक्टर साहब एक और मैसेज आया है और ये है मोहित जी, और इनकी उम्र है 43 ईयर्स, ये आगरा से है। कहते हैं कि शुड वी यूज बॉइल्ड वाटर OR और कैन यूज वाटर ऑफ RO फिल्टर्स ऑल्सो, यानी कि दोनों इन्होंने ये कहा है कि आप RO का वाटर यूज करना चाहिए या फिर बॉइल्ड वाटर, दोनों में क्या फर्क होगा?
0: जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जब कभी भी हम पानी की उबालने की बात करते हैं तो इसमें दो क्राइटेरियाज हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम दिल्ली या आसपास में रह रहे हैं तो 20 सेकंड रोलिंग बॉइल अप टू 1 मिनट,
1: अगर RO का पानी है तो भी।
0: जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कभी भी पानी की जो TDM है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग फोकस कर रहे हैं आपके जो बायोलॉजिकल चीजें हैं, जैसे कि

0: कोलेरा का जो है या पैरासाइट्स हैं उसको नष्ट करने की।
1: जी डॉक्टर,
0: अगर हम आरओ की बात करते हैं तो आरओ में कुछ अलग टाइप के आरओ भी आते हैं जो बैक्टीरिया को भी रोक सकते हैं। अगर आपका आरओ उस लेवल का है तो आप आरओ का पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आरओ का जो काम है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का है।
1: जी डॉक्टर,
0: तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही अगर आपका आरओ कर रहा है तो फिर वो आपको इन्फेक्शन से यूजुअली नहीं बचा पाता।
1: जी, तो कोशिश कीजिए कि पानी बॉइल हो जाए और वो भी 20 सेकंड, मिनिमम 20 सेकंड बॉइल हो जाए तो बेटर रहेगा।
0: इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से 1 मिनट भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 20 सेकंड भी अगर आप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा।
1: जी, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार। कमल सर को भी नमस्कार और गुप्ता डॉक्टर साहब को भी प्यार भरा नमस्कार।
1: जी नमस्कार, आपका शुभ नाम?
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी रघुवीर जी, बताएं कैसे हैं आप?
2: बस ठीक हैं डॉक्टर साहब भी। और मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम तो उत्तराखंड में पहाड़ों में जैसे कि बारिश तो होती थी, भीगते तो है रोजमर्रा की जिंदगी में, गाय के लिए चारा पत्ती लाना पड़ता है, तो एक तो भीगने से ये सुना है कि मत सर काट देगा तो बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया वगैरह भीगने के तुरंत बाद। दूसरा ये है कि जैसे भीगने से कोई सर्दी जुकाम या ऐसा बदन में ऐसा हो जाता तो हम हॉस्पिटल तो रहते नहीं है, लेकिन आसपास से कोई दवाई खा लेते हैं, तो ये क्या ठीक है कि नहीं है? और भीगने से कोई मच्छर काटने से कोई बीमारी तो नहीं होती?
1: जी डॉक्टर गुप्ता जी,
0: देखिए पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि भीगने से जैसे अगर आपको खांसी जुकाम या गले में दर्द होता है तो अमूमन ये जो भीगने के बाद वाला होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें किसी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। अमूमन तो ये सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक हो जाता है, आपने गर्म काढ़ा चाय पी उससे ठीक हो जाता है। तो और अगर नहीं ठीक होता है तो आप कुछ एंटी एलर्जी या विटामिन की गोली लेते हैं, उसी से ठीक हो जाएगा। अब अगर ये 3-4 दिन से ऊपर का है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर अपना टेस्ट करके देखेंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है, अदरवाइज तो ये यूजुअली इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, इसमें इन्होंने कहा कि भीगने के बाद में अगर मच्छर काट लेता है तो क्या इससे भी मलेरिया?
0: भीगने से मच्छर का कोई मतलब नहीं, मच्छर पनपेगा तब जब आपके पास स्टैग्नेंट यानी कि खड़ा हुआ पानी होगा, जैसे कि हमारे किसी पॉट में चला जाए, हमारे किसी बर्तन में रखा हुआ रह जाए, या बाहर जो कूड़ा है या जो नालियां हैं उसमें पानी जो है उसका बहाव कम हो जाए तो मच्छर वहां से पनपेगा, और वहां से जो मच्छर पनपेगा वो मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी कॉज कर सकता है। भीगने के बाद मच्छर एक्टिव हो जाएगा या मच्छर की बीमारी ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब सिर्फ उसी से है कि स्टैग्नेंट पानी में मच्छर का पनपना बढ़ जाता है, मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है, और इसका कोई भीगने से इसका कोई मतलब नहीं।
1: डॉक्टर साहब, तो जो मच्छर होते हैं क्या जो हर मच्छर है यानी कि हर मच्छर के कोई भी मच्छर काटेगा तो बीमारी हो जाएगी, मलेरिया हो जाएगा?
0: नहीं, अमूमन ऐसा नहीं होता। मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मस्किटो से होता है, और जो चिकनगुनिया और जो डेंगी है
1: जी
0: वो एडीज मॉस्किटो से होता है।
1: हाँ।
0: तो ये दोनों मॉस्किटो अलग अलग होती हैं। तो अमूमन हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रेश वाटर जो मॉस्किटो होती है वो एडीज होती है
1: जी,
0: और जो गंदे पानी में जो पनपती है वो एनोफिलीज होती है। तो अगर आपके नालियों में गंदा पानी है, एल्गी है, तो वहां पे जो पनपेगी वो एनोफिलीज मॉस्किटो होगी, तो उस एरिया में मलेरिया की तादाद हो सकता ज्यादा हो
1: जी।
0: और जिस एरिया में फ्रेश वाटर स्टैग्नेशन होता है, जिसमें जैसे कि बरसात का पानी है, आपके घर का जो वेस्ट वाटर है या जो रेन ड्रेन पाइप्स जहां पे खुलते हैं, वहां पे अगर स्टैग्नेशन ज्यादा होता है तो वहां पे एडीज मॉस्किटो की पनपने की चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगू होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार ये भी देखा गया कि जहां पर नाले नहीं है, पानी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जंगल झाड़ यानी कि झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, वहां पर भी मच्छर होते हैं?
0: हाँ, लेकिन झाड़ियों में जो पेड़ पौधे में जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो उन झाड़ियों में नीचे थोड़ा बहुत पानी स्टैग्नेशन होता है, वहीं जैसे घास है, घास में डैम्पनेस होगी, बरसातों में जो डैम्पनेस है वो बढ़ जाती है, तो इवन अगर आपका जो घास है उसके ऊपर अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर भी पानी होगा तो मच्छर उसमें भी पनप जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया, ये तीनों मच्छर से ही होते हैं, लेकिन किस प्रकार के मच्छर से होते हैं अभी आपने बताया, लेकिन हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि डेंगू या मलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें क्या क्या अंतर होता है, इनमें क्या अलग अलग इसमें लक्षण दिखाई देते हैं? तो सब जब तक अपने लिसनर्स के कॉल आते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौट कर आते हैं।
0: ठीक।

0: और इस लवली ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और आपके सवालों को लेने के लिए तैयार हैं, आपको जानकारियां देने के लिए तैयार हैं और आपको अपने डॉक्टर साहब से बात करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि एक फोन कॉल आ गया है और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो सर, मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। नमस्कार सर। नमस्ते सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार राधा जी।
1: सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे ये मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है तो सर मुझे सुबह उठते के साथ छींकें आनी शुरू हो जाती है, आँख से भी पानी आना और आँखों से भी पानी आना शुरू हो जाता है सर, और मेरे सिर में भी थोड़ा हल्का दर्द होता है, तो सर ये क्या ये इन्फेक्शन है कोई सर, क्या ये एलर्जी है मुझे?
0: जी डॉक्टर साहब,
2: देखिए पुख्ता तौर से तो मैं नहीं कह पाऊंगा राधा जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से अगर ये घंटे डेढ़ घंटे में ठीक हो जाता है तो अमूमन इस तरह की चीजों को हम एलर्जी का ही नाम देते हैं। इन्फेक्शन हम तब बोलते हैं जब साथ में बुखार भी हो आपको। तो
1: नो सर, बुखार नहीं होता सर, बस ओनली इसी मौसम में शुरू हो जाता है, जैसे ये मौसम चला जाएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है।
2: हाँ, तो जिस तरह का आप बता रहे हैं किसी किसी को ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से इस तरह का होता है, तो ऐसी कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलके आप कुछ विटामिन की दवाई लिखवा सकती हैं और कुछ नेजल स्प्रेज भी आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनके कंसल्टेशन के बाद ही।
0: डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी कहा कि इनकी आंखों से पानी आने लगता है।
2: जी, आंखों से पानी के पर्याय अलग अलग है कमल जी। जैसे आंखों से खाली पानी आता है तो उसको हम एक तरह का एलर्जी मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आंखें लाल भी होती हैं और आंखों में से मवाद या पानी आता है तो तब उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो अमूमन ये बरसात के मौसम में किसी किसी को हो जाता है, तो यूजली इसको भी हम ब्रॉडली फ्लू में बोलते हैं, इसको आई फ्लू बोल देते हैं या फिर कंजंक्टिवाइटिस बोल देते हैं। तो अमूमन इसमें भी किसी बड़े एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, तो क्योंकि ये अमूमन इसका जो स्रोत होता है वो वायरल होता है, तो आप बस आंखों को प्रोटेक्ट करना है, आपको हाइड्रेटेड रखना है और एक दूसरे से

0: आंख कॉन्टैक्ट नहीं करना है,
1: आईज का कॉन्टैक्ट गलत है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आई जैसे आपने आंख पहुंची अपने हाथ से, वो हाथ आपने किसी को लगाया और उसने फिर वो हाथ अपने आंख पे लगाया, ऐसे आई फ्लू फैलता है। देखने से
0: नहीं होता। कई लोग काला चश्मा लगा के रख लेते हैं।
1: काला चश्मा लगाने का पर्याय दूसरा है। काला चश्मा लगाना इसलिए क्योंकि फोटोफोबिया, यानी कि जब आप रोशनी में जाते हैं बाहर तो आंखें चौंधिया जाती हैं, तो उस चीज के लिए काला चश्मा हम लोग एडवाइस करते हैं। काला चश्मा आंख से आंख देखने से आई फ्लू होगा ऐसा नहीं, उस चीज के लिए नहीं दे रहे हैं।
0: अच्छा, यानी कि आप जब कभी इस प्रकार से आपको आई फ्लू हो जाता है तो आप अपने हाथों से अगर आपने अपनी आंखों को पोंछ लिया है और उसके बाद किसी और के साथ में हाथ मिलाते हैं और के साथ में संपर्क में आते हैं तो आपको भी यानी कि सामने वाले को भी आई फ्लू हो सकता है।
1: जी,
0: तो इससे बचना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल। एक तो अगर सपोज मुझे आई फ्लू है तो मैं अगर अपनी आंख पोंछ भी रहा हूं तो मुझे अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना होगा, या तो मैं बार बार अपना हाथ धोऊं साबुन से, या फिर मैं एक एल्कोहल
0: सैनिटाइजर
1: होता है उसको यूज करूं जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल हो, 60% एल्कोहल।
0: जी, और जो अपने जो कपड़े हैं उनको भी अगर एक बार पहनने के बाद में अगर उनमें भी चला जा सकता है।
1: इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपड़े आपके हमेशा धुले हुए और साफ कपड़े पहनने हैं आपको बरसातों में, खासकर अगर आप रोज चेंज करते हैं तो और भी अच्छा।
0: जी जी डॉक्टर साहब एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, आपका शुभ नाम?
2: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरी उम्र है
0: जी,
2: तो सबसे पहले तो एंकर साहब और डॉक्टर साहिबान दोनों को बेहद शालीनता से नमस्कार और आभार।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, मेरे और पहला सवाल ये है कि जो वर्षा का पानी से कहा जाता है कि अमृत होता है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ अगर हम इसको किसी साफ सुथरे बर्तन में स्टॉक करें भर लें तो क्या उस पानी से हमें आई वॉश करनी चाहिए और इसको हम पी भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम, कोई हल तो नहीं इससे? बरसात के दिनों में दांत खाज खुजली तो ज्यादा ही हो जाती है, हाथ पर नेल्स होते हैं, नाखून और फंगस ये बढ़ जाते हैं, तो इसका हम घरेलू स्तर पर क्या उपाय करें? और तीसरा आखिरी सवाल ये है कि इंदौर पार्क में ना जिम बहुत लग गई है, तो क्या बरसात दिनों में हमें जिम एक्सरसाइज करनी चाहिए मशीनों पे, जरा ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए पहला सवाल जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा साहब, बरसात का पानी अमृत होता है, अगर बरसात नहीं हो तो देश में कुछ नहीं चले।
0: जी,
1: ना तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी उपज आएगी, ना देश चलेगा, ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। किसी भी चीज में अगर कुछ चाहिए तो हमें बरसात सबसे पहले चाहिए, तो इसलिए जो आपने कहा साहब बरसात का पानी अमृत है वो सबके लिए अमृत है। लेकिन अब उस बरसात के पानी का जो हम आजकल वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम उसी पानी को अगर किसी बर्तन में लेते हैं तो कच्चे पानी के उसमें ट्रीट होता है वो, यानी जो क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो कच्चे पानी में ट्रीट होगा। अगर वो अनट्रीटेड पानी अगर हम यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो बरसात के पानी में कुछ पोल्यूटेड चीजें भी आती हैं, जैसे जो हम अगर दिल्ली में ही रह रहे हैं तो अगर हम देखें
0: एनवायरमेंट की वजह से।
1: तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये है तो अमृत, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा प्यूरिफाई कर लें और ट्रीट कर लें या उबाल लें तो उसको हम पीने में भी यूज कर सकते हैं, और जैसा आप बोल रहे हैं मुंह हाथ धोने में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि उसको ट्रीट कर लिया जाए।
0: जी, छान लें अच्छी तरह से, अगर उसे बॉईल कर लें और उसके बाद में इस्तेमाल करें तो बेटर होगा, आंखों के लिए भी और अपने जो पीते हैं उसके लिए भी, पेट के लिए भी।
1: दूसरा इन्होंने पूछा था कि स्किन डिजीजेस, तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये ह्यूमिड एनवायरमेंट होता है और पसीने ज्यादा होते हैं तो स्किन की डिजीजेस काफी कॉमन होती हैं। इसमें अमूमन तो जो हम एडवाइस करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया साफ ड्राई और अगर हो सके तो प्रेस किए हुए कपड़े आप पहनेंगे, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं या फंगस हमारे कपड़ों पर लग जाती है वो डेड हो जाती है, वो फिर वापस आपके शरीर को दोबारा इन्फेक्ट होने नहीं देती है। तो यूजली तो जैसे जैसे आप सूखापन करेंगे अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो यूजली तो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, किसी किसी को ऊपरी तौर से कोई क्रीम या किसी किसी को खाने वाली गोली की जरूरत पड़ती है, अमूमन ये बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होते।
0: जी डॉक्टर साहब, और इन्होंने जो फंगल इन्फेक्शन की बात की है और इन्होंने ये कहा कि खुजली वगैरह सब हो जाता है और नाखूनों की भी बात कर रहे थे थोड़ी बहुत कि इस प्रकार से नाखून बड़े होते हैं तो उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्या?
1: हाँ, जैसे मैंने बताया ना ये दांत खुजली फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं, इसको हम लोग टीनिया बोलते हैं, तो इसका इलाज बहुत ही इजी होता है। अमूमन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपको शुगर नहीं है, आपको किडनी की दिक्कत नहीं है, लिवर की दिक्कत नहीं है, तो ये जल्दी ठीक हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, इन्होंने एक बात और कही कि आजकल

0: कई जगह देखा जा रहा है कि पार्क्स में ओपन जिम है, अगर हम ओपन जिम में अगर अपना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं तो इसमें एक्सरसाइज तो होता ही है, लेकिन क्या इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है अगर शारीरिक रूप से लिया जाए तो? और सांस को जी,
1: चलती बरसात में जिम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर आप जिम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो आपको बस यह है कि शरीर के पसीनों का ध्यान रखना है पहला, और दूसरा अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, जो मैंने अपनी बातचीत के दौरान सबसे पहले बताया था, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस अवॉइड करना है। अगर आपकी बरसाती हवा चल रही है तो उसमें आप एक्सरसाइज करेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें आपको बीमार होने का या मांसपेशियों में अकड़न होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एक और फोन कॉल आया हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब बताएं।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब बारिश होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बारिश में नहाने से घमौरिया वगैरह ठीक हो जाती है, तो हमारे बच्चे या हम लोग क्या बारिश के पानी में नहाएं तो हमारी घमौरिया या स्किन डिसऑर्डर सही हो जाते हैं? कृपया विस्तार से बताएं।
0: डॉक्टर साहब, क्या बारिश के पानी में नहाने से स्किन जो डिसऑर्डर्स हैं, घमौरियां हैं, वो क्या ठीक हो जाती हैं या इसके कुछ और रीजन होते हैं?
1: देखिए, इसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन बारिश में भीगने से अगर साफ एनवायरनमेंट में आप भीग रहे हैं तो मजा जरूर आता है।
0: थोड़ी सी राहत मिल जाती है, जो खुजली होती है, जो उसमें फंगस जो आ जाता है उसमें अगर भीग जाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी कम हो सकती है, खुजली कम हो सकती है।
1: बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा कि इस सवाल का, मैं घमौरियों से रिलेटेड जो सवाल उन्होंने पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि बारिश के जस्ट पहले जैसे उमस बहुत ज्यादा होती है, पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से अगर किसी किसी को कुछ दाने वाने हो गए और बरसात के बाद क्योंकि टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो हो सकता है उस वजह से हो जाए, तो ये लेकिन ये मेरा
0: पर्सनल
1: थिंकिंग है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है कि नहीं ये मैं शायद हो सकता है अगली बार पढ़ के आपको बता।

0: तो घर में आपका टेम्परेचर इस तरह का नहीं होगा कि आपको पसीने आए
1: जी।
0: तो मुझे तो ऐसा कोई खास इसमें कारण नहीं लगता। इवन हमने भी अपने किसी मरीज को ऐसे सर्दी में या रेनी सीजन में सर्जरी ना कराने की सलाह अभी तक तो नहीं दी है
1: जी। डॉक्टर साहब, सरोज मल्होत्रा जी ही हैं साकेत रेड से, और इनका कहना है कि कितना फीवर होने पर बच्चों या बड़ों को मेडिसिन लेनी चाहिए।
0: देखिए, फीवर कितना का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। फीवर का मतलब जब कभी भी शरीर का जो टेम्परेचर है अगर आपके थर्मामीटर में 99.5 से ऊपर का आ रहा हो तो उसको हम बुखार कहते हैं। तो जब बुखार हो अगर वो अपने आप नहीं उतर रहा है तो बेहतर है उसके लिए दवाई ले लें, और उसकी डोज जो है वो बच्चों और बड़ों के हिसाब से, वजन के हिसाब से अलग अलग होती है, तो वो आपके डॉक्टर से सलाह लेके ही करें।
1: डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज और है। अश्विनी शर्मा जी पूछते हैं कि जो आरओ वाटर से सिर्फ चाय और खाना बनाने का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो दूसरा पानी होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कुछ परेशानी हो सकती है क्या?
0: आरओ वाटर से बताया ना, वो आरओ वाटर से इलेक्ट्रोलाइट तो करेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके आरओ में कुछ एडवांस्ड आरओ भी आते हैं जिसमें कि बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन का वो क्लेम करते हैं कि भाई ठीक हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आप नॉर्मल अपने घर में अगर एक बड़े मर्तबान में या बड़े पतीले में पानी गर्म करके, जैसे मैंने बताया ना, रोलिंग बॉयल में 20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का आपको रोलिंग बॉयल करना है, और उसके बाद उस पानी को ठंडा करके आप कैसे भी यूज कीजिए, चाहे आप उसको पीने में यूज कीजिए, खाना बनाने में यूज कीजिए, हर तरीके से वो पानी आपके लिए फिर सेफ रहेगा। आपको अलग से उसके लिए बोतल मंगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस, ये जानकारी मिलती है कि पानी प्रदूषित है और ये काफी लंबे समय के बाद भी इसके लक्षण नजर आते हैं, तो किस प्रकार के जो हेपेटाइटिस है ABCDE, तो इनमें सबसे खतरनाक, जैसे कि कल डॉक्टर साहब सबसे भी हम बात कर रहे थे, तो ए जो है वो उसके लिए किस प्रकार होने चाहिए, बी के लिए क्या होने चाहिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, उन्होंने सारी कुछ बताया। तो क्या ये पानी से जो जन्मते हैं बैक्टीरिया निकलते हैं, फंगल या फिर इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस ए है इसके लिए किस प्रकार के, ये इसका किस प्रकार का लक्षण होता है और इसमें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, हेपेटाइटिस ए और ई
1: जी,
0: ये दोनों प्रदूषित पानी से होते हैं। इसको हम लोग फीको ओरल रूट कहते हैं। जैसे सपोज अगर मुझे अगर हेपेटाइटिस ए है तो मेरे मल के थ्रू कहीं का पानी अगर दूषित हो जाएगा तो वो वायरस वहां चला जाता है, और फिर जो वो पानी पिएगा उसको वो हेपेटाइटिस होने का डर रहता है। तो बरसातों में काफी कॉमन है, तो जो हमारा सीवर है वहां से पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है,
1: मिक्स हो जाता है,
0: और वो ग्राउंड वाटर अगर प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं होता है तो फिर हेपेटाइटिस ए और ई उससे फैल सकता है।
1: जी।
0: अब हेपेटाइटिस ए और ई को हम लोग अमूमन पीलिया का नाम देते हैं।
1: जी।
0: जो हम लोग आमतौर पर पीलिया बोलते हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई ही होता है। तो ये तो इसकी प्रक्रिया हुई फैलने की। इसमें यूजली जो सिम्टम्स होते हैं वो फीवर है, आपका खाने पीने की इच्छा बिल्कुल मर जाती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, लैटिन किसी किसी की सफेद आनी शुरू हो जाती है, आपका पेशाब जो है बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ये सब चीजें इसमें होनी शुरू हो जाती है।
1: आंखों का रंग भी कुछ पीला सा नजर आने लगता है।
0: जी बिल्कुल, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। जी, ये सब चीजें इसमें हेपेटाइटिस ए और ई में होती हैं।
1: जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी और किसी ने पूछा था कि, एक लिसनर ने पूछा था, क्या ग्राउंड वाटर जो है उससे भी कुछ संभावना बनी रहती है हेपेटाइटिस ए की या ई की?
0: जी, मैंने बताया ना, जैसे सीवर का पानी
1: जी
0: या जहां
1: मिक्स हो जाने पे वो जी, लेकिन अगर मिक्स ना हुआ हो और ग्राउंड वाटर जैसे कई जगह
0: अमूमन बरसातों में मिक्स हो ही जाता है।
1: अच्छा,
0: ग्राउंड वाटर का जो स्रोत है वो ऊपर से जब पानी नीचे जाएगा तो ही ग्राउंड वाटर बनता है।
1: जी जी, तो इसलिए उसका इस्तेमाल कुछ सोच समझ करके करना चाहिए।
0: जी, उबालना सबसे बढ़िया प्रक्रिया है बरसातों में, तो कम से कम आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं और इसमें एक डॉक्टर साहब बहुत कम सुनाई देने को मिलता है और वो है लेप्टोस्पायरोसिस। डॉक्टर साहब, ये किस प्रकार की बीमारी है, बरसात के मौसम में हो जाती है?
0: लेप्टोस्पायरोसिस अमूमन जो दूषित एनिमल्स के यूरिन को यूरिन की वजह से स्प्रेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो पानी है वो दूषित यूरिन से कंटेमिनेट हो जाता है
1: जी,
0: और उसकी वजह से लेप्टोस्पायरोसिस होता है।
1: इसमें इसके लक्षण क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: लक्षण अमूमन फीवर, बहुत ज्यादा मसल एक, हेड एक, किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो जाती है लैट्रिन में से, और पेशाब में भी, आंखें बिल्कुल कंजक्टिवाइटिस या रेड आईज बोलते हैं, और अगर सीवियर होता है तो ये किडनी और लिवर को भी इफेक्ट कर सकता है आपके।
1: अच्छा, ये मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं
0: जी।

0: अगर अगर ट्रीट नहीं होता है तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अमूमन जो आजकल हमारी एक प्रचलन हो गया है कैंड चीजें लेने का, जो आपने कैन खोला और कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जूस पी लिया, तो ये भी बहुत कॉमन है लेप्टोस्पायरोसिस का एक रीजन।
1: अच्छा।
0: जो जितने भी स्टोर रूम्स होते हैं या जितने भी वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे ये स्टोर होते हैं, वहाँ पे चूहे हैं या जिसको हम लोग घूस बोलते हैं या रैबिट्स हैं या इवन डॉग्स हैं, उनके दूषित यूरिन, जैसे अगर उन्होंने वो कैन के ऊपर यूरिन कर दिया या यूरिन उस कैन के ऊपर जमा हो गया और आपने बिना धोए कैन को खोला और पी लिया आपने, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कोई भी जूस, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आजकल लेप्टोस्पायरोसिस।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कैन की बात की है, तो आपने ये कहा कि उसके ऊपर अगर यूरिन है किसी चूहे का या फिर किसी और भी जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके, तो आप ये तो कैन तो बंद होते हैं डॉक्टर साहब?
0: नहीं, कैन के ऊपर सर
1: जी,
0: जो कैन का एल्यूमिनियम का कैन है
1: जी,
0: उसके ऊपर जहां आप खोलते हैं उस एरिया के ऊपर तो बंद नहीं, मतलब खुला हुआ नहीं है, लेकिन वहां पे जो यूरिन है वो सूख जाएगा
1: जी।
0: तो जब आप खोलेंगे कैन को तो जो बबल्स या कोई भी जो लिक्विड है वो ऊपर जाएगा और फिर उसी को आप पियेंगे तो वो इन्फेक्शन उसके साथ ही अंदर चला
1: जी। और अक्सर बरसात में देखा जाता है कि चूहे घरों में घुस जाते हैं और बर्तन वगैरह में कहीं कहीं पर ये सब विचरण करने लग जाते हैं
0: जी, जी।
1: तो ये एक परेशानी का सबब हो सकता है।
0: और इसका बहुत छोटा सा सोल्यूशन है कि जब भी आप बाजार से कोई भी कैंड जूस या कुछ लेते हैं तो उसको बस अच्छी तरह धो लीजिए, ठीक है, इवन जैसे बर्तन को भी यूज करने से पहले आप धो लेंगे तो इसकी काफी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि आपको लेप्टोस्पायरोसिस।
1: ये अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल चलन हो गया है फूड का या फिर जूस का इस्तेमाल करने का। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार जी,
2: मैं किशन बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जैसे मेरे को हर्निया का ऑपरेशन कराना था, एक मेरी उम्र 75 है, हर्निया मेरे जांग के बगल में हो रखा है, राइट साइड की जांग में, तो उसके ऑपरेशन के लिए ये समय सही है क्या
1: जी डॉक्टर साहब? इनको हर्निया
0: मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। देखिए, इसमें मौसम से कोई मतलब नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका हर्निया किस लेवल का है और ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है, वो सब डिसीजन आपके सर्जन का है। लेकिन खाली मौसम की वजह से उसको डिले करना है, ऐसा हमारी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है
1: जी। किशन जी, आप कभी भी हर्निया का ऑपरेशन करा सकते हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है, इनकी सलाह ये है। और डॉक्टर साहब, एक व्हाट्सएप मैसेज है, और ये एक बार फिर इन्होंने नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से पूछा है। एक बार इन्होंने प्रश्न पूछा था और इनका पूछना है, कहना है कि बरसात के मौसम में कैसा खान पान होना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए।
0: देखिए, खान पान के मामले में अगर हम बोलें तो ब्रॉडली आपको दो तीन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो कच्चा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए
1: जी।
0: आपका जो खाना होना चाहिए वो वेल कुक्ड और हॉट हम लोग बोलते हैं, यानी कि आपका खाना जो है अच्छी तरह पका हुआ होना चाहिए, और गर्म खाना और फ्रेश खाना खाएं, कभी भी पुराना रखा हुआ खाना ना खाएं
1: जी।
0: अगर हम बात करें फ्रूट्स की या नट्स की, तो हमेशा ट्राई कीजिए वो वाले फ्रूट्स लो जो कि आप पील कर सको, जो आप छील सको। यानी छिलका उतरा हुआ डायरेक्ट फ्रूट लेना बरसात के मौसम में थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, और कट फ्रूट तो बिल्कुल ही नहीं।
1: डॉक्टर साहब, इसमें तो फिर जैसे आपने कहा कि छील करके पील करके, तो इसमें डॉक्टर साहब इसमें सेब है, अमरूद है, इस प्रकार के, तो इनको तो छिला तो नहीं जाता है?
0: नहीं तो, लेकिन आप अच्छी तरह धो तो सकते हैं
1: जी। अच्छी तरह धोया जा सकता, धोकर ही खाना चाहिए
0: जी, बिल्कुल धोके खाना चाहिए। इवन कई लोग बरसातों में सेब को पील करके भी खाते हैं, इवन अगर अमरूद अगर आप खाते हैं तो अमरूद को आप अच्छी तरह वॉश करके जरूर खाइए
1: जी। जी, तो ये अच्छी बात है कि जब कभी आप इस प्रकार के जो बिना छिले हुए छिलके,
0: और धोने के लिए भी हम ये बोलेंगे कि ट्रीटेड वाटर से धोला जाए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप ट्राई कीजिए कि वो ट्रीटेड वाटर से, यानी जो पोटेबल वाटर जिसको हम लोग पीने का पानी बोलते हैं, उससे धोया जाए
1: जी डॉक्टर साहब।
0: अनट्रीटेड वाटर या बरसाती पानी से बिल्कुल ना धोएं
1: जी डॉक्टर साहब। परहेज करने वाली बात है, तो किस प्रकार जो खान पान में आजकल देखा जाता है कि चटपटा खाने की आदत है लोगों को, ऑयली चीज खाने की आदत है, तो बरसात के मौसम में क्या इन सबको अवॉइड करना चाहिए?
0: देखिए, जो भी चीज आप, जैसे मैंने बताया ना, ऑयली चीज और चटपटी चीज अगर खानी भी चाहें तो ऐसी जगह से खाएं जहां पे एक तो फ्रेश मिल रहा हो और ऊपर से वो ओपन ना हो, जैसे कवर्ड हो, जैसे अगर आप कहीं कोई ऐसी तली हुई चीज खा भी रहे हैं तो कवर्ड चीज में रखी हो, उसमें मक्खी मच्छर ना हो
1: जी।
0: तो क्योंकि बरसातों के टाइम पे टाइफाइड होना या एंटराइटिस होना ये बहुत ज्यादा कॉमन है
1: जी, इसलिए ढक करके रखें और जो जो छील के खाने वाली चीज है उनको जरूर छील के खाएं, और अगर छील के नहीं खाते हैं तो उसे जरूर अच्छी तरह से ट्रीटेड वाटर से छील के खाना चाहिए और धो के खाना चाहिए जी।
0: और आइडियली आपको हाथ धो के अपना खाना बनाएं और हाथ धो के ही खाना खाएं
1: जी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लें
0: जी,
1: एक लवली सा ब्रेक लेते हैं फिर।

0: और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर लौट आए हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और रखना भी चाहिए, और जो नवजात शिशु होते हैं उनको भी बरसात के मौसम में कुछ अच्छी तरह से रखना चाहिए, तो ये किस प्रकार से उनका ध्यान रखे, किस प्रकार से बुजुर्गों का ख्याल रखे, ये दोनों आप थोड़ी सी जानकारी दे दें।
1: देखिए, कुछ जानकारी तो जैसे भी पूरे कार्यक्रम में देते ही आ रहे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस का ध्यान रखना है, भीगे कपड़े पहन के हवा में नहीं घूमना है। बुजुर्गों में दो चीजें हैं कि एक तो क्या है कि हम अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो मांसपेशियों में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या जो बरसाती हवा है उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा अगर किसी को ज्वाइंट की प्रॉब्लम है तो ज्वाइंट की प्रॉब्लम या ज्वाइंट पेन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं किसी किसी को। दूसरा, अगर हम बात करें कि फ्रैक्चर्स की, तो ये बरसाती मौसम में थोड़े से ज्यादा कॉमन होते हैं, खासकर अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो फिसलन की वजह से या डैम्प, जब जगह डैम्प होती है तो जब आप सुबह सैर करने जाएं या बाहर निकलें तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलें। अगर आपको लगता है कि इस जगह फिसलन है तो बेटर है कि आप घर में ही वॉक करें या घर में ही कुछ एक्सरसाइज या टोनिंग एक्सरसाइजेस करें। नवजात शिशु की अगर हम बात करें तो उनके खान पान का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप मदर हैं तो आपको खुद को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको खुद को कफ कोल्ड है या फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं तो आप बच्चे को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर सकते हैं। नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, अभी इम्यूनिटी की बात की डॉक्टर साहब, तो सभी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को और जो एडल्ट हैं, जो नॉर्मल हैं, उनको भी इस बरसात के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने बताया, फ्रेश फ्रूट्स और विटामिन सी रिच फ्रूट्स, ये सब बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रूट्स की, तो जैसे विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू है या संतरे हैं, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए, इवन आंवला
0: जी,
1: तो ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। थोड़ा सा प्रोटीन आपकी डाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए।

0: जी, प्रोटीन के अलावा डॉक्टर साहब और किस प्रकार की चीजें ले सकते हैं? अगर खान पान की बात करें तो, अगर फ्लूड की बात करें, फ्लूड में किस प्रकार की चीज ले सकते हैं?
1: देखिए, फ्लूड में हम ORS ले सकते हैं, नींबू का जो नींबू की शिकंजी होती है वो ले सकते हैं, और नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हम बरसात में, थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहेंगे तो, क्योंकि उमस की वजह से अगर पसीना भी निकल रहा है तो प्लेन पानी पीने से बेहतर है कि हम ORS, नींबू पानी या नारियल पानी, इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें।
0: जी डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में टाइफाइड की शिकायत भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तो टाइफाइड में इसके लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से इससे बचाव किया जाए?
1: टाइफाइड भी जैसे मैंने बताया ना, ये आंत्रशोथ यानी एंट्राइटिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको जो फीवर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है एज कम्पेयर टू अदर वायरल फीवर। दूसरा, इसमें फीवर के अलावा आपको दस्त, उल्टी भी हो सकती है।
0: जी जी।
1: और इसमें किसी किसी को कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
0: जी जी।
1: तो अगर आपका फीवर 3-4 दिन से ज्यादा का चल रहा है, आपको लगातार दस्त हो रहे हैं, अगर आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं, आपका एपेटाइट लूज हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि वो आपको एक बार टाइफाइड के टेस्ट करा के देख लें और फिर टाइफाइड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे दें।
0: जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत सारे होते, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी अगर क्योंकि हमारे पास टाइम वक्त बहुत कम है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दें कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं।
1: देखिए, शुरुआती लक्षण करीब करीब सबके सेम होते हैं, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, सभी बुखार के साथ प्रेजेंट करते हैं और बुखार काफी तेज होता है। इसमें बस थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, जैसे कि चिकनगुनिया में ज्वाइंट पेन्स है या जो रैश जिसको हम बोलते हैं शरीर में जो लाल लाल चकत्ते होते हैं वो ज्यादा होते हैं, थकान बहुत ज्यादा होती है। डेंगू में अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, मसल एंड ज्वाइंट पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, किसी किसी को आंखों में भी दर्द होता है। मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको बुखार ठंड लग के आएगा,
0: तेज ठंड लगती है,
1: तेज ठंड लगती
0: है, कपकपी होती है।
1: जी बिल्कुल, राइगर जिसको हम बोलते हैं, कपकपी होके और बुखार जो है, फिर उसमें कभी कभार हमें पता ऐसा चलता है कि भाई किसी किसी को हर 24 घंटे में आ रहा है, किसी किसी को हर 48 घंटे में आ रहा है, इस तरह का कपकपी वाला फीवर, तो वो मलेरिया की तरफ ज्यादा जाता है।
0: जी अक्सर बरसात के मौसम में यह भी देखा गया कि फूड पॉइजनिंग कई बार बढ़ जाती है, तो फूड पॉइजनिंग ये होता क्या है?
1: फूड पॉइजनिंग एक, जैसे मैंने बताया कि ये दूषित पानी का आपके खाने में मिश्रण
0: जी,
1: और वो आपके जब पेट में जाता है तो वो एक अलग टाइप की प्रक्रिया या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग का नाम देते हैं।
0: जी,
1: इसमें उल्टी, दस्त, बुखार, ये तीनों चीज हो सकती हैं। किसी किसी को बहुत ज्यादा हो जाती है तो लैट्रिन में से खून भी आ जाता है। तो ये फूड पॉइजनिंग के अलग अलग मानक होते हैं और अलग अलग ग्रेड्स होती हैं।
0: तो अगर किसी को इस प्रकार हो जाए तो उनको प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड किस प्रकार से किया जाए?
1: अगर आप किसी दूर दराज के इलाके में है तो सबसे पहले इसमें हमें जो प्राथमिक उपचार चाहिए वो है डिहाइड्रेशन ठीक करना, यानी कि आपको उस पेशेंट का पानी ठीक रखना है
0: जी,
1: यानी हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, चाहे ORS दें चाहे इंजेक्शन से दें, लेकिन वो प्राथमिक उपचार सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारियां आपने दी और हमारे श्रोताओं ने भी कई सारे सवाल पूछे और उनका भी आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। मुझे लगता है कि अपने श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जरूर संतुष्ट होंगे और अगली बार एक नए टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे डॉक्टर साहब। और अपने दोस्तों से हम ये कहेंगे कि बारिश का जो मौसम होता है वो खुशियां लेकर आता है और स्फूर्ति लेकर के आता है, लेकिन बीमारियों से बचने के लिए सतर्क रहना भी जरूरी है, सावधानी रखनी जरूरी है, स्वच्छता, मच्छरों से बचाव जरूरी है, और जो पानी पीते हैं उसे उबला यानी कि उबाल कर पीना चाहिए। तो अगर ऐसे उपाय करते हैं तो इन बीमारियों की जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और बारिश का मजा लेते रहें। और अब आपसे दोस्तों विदा लेने का वक्त हो चुका है डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, वक्त निकाला आपने और इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एक्सपर्ट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आकाशवाणी से जुड़े रहिए और फिलहाल अपने दोस्त KK यानी कमल किशोर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

102.6 की फ्रीक्वेंसी से लीजिए प्रस्तुत है शाम 4 बजे के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से इतर डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफू में तुर्की के हथियार और उपकरण थे, जिन्हें मोगा दिशु में एक सेना परीक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। अमरीका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमरीका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये है अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी से। आप साथ ही हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप, लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी सुन रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची पर ध्यान दें। 5:02 पर सिटेलाइट प्रस्तुत करेंगी शैली भाषांजलि और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। समय रहेगा इस कार्यक्रम का 6:02 से 7 तक का। सीमा सती इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी। वेस्टर्न म्यूजिक आर 7:02 पर आप सुनेंगे फ्राइडे फिएस्टा लिपिका दास के साथ। और सीमा एक बार फिर 8:02 पर आपके लिए लेकर आएंगी म्यूजिक मस्ती यानी नॉन स्टॉप डांस हिट्स का। हिट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। 9:02 पर रात्रि सभा में आपकी याद आती रही कार्यक्रम लेकर विकास कौशिक प्रस्तुत होंगे। और 10 आप सुनेंगे 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक आर वीकेंडर लिपिका दास के साथ। इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा 11:02 पर जीरो आर तक रंगे महफिल। विकास कौशिक इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यक्रम में आप गजलों का लुत्फ उठा सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। जुड़े रहिए दिल से दिल तक आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि ये है इन्फोटेनमेंट का खजाना। इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे साथ यूं ही लगातार बने रहिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 102.6 की फ्रीक्वेंसी। लम्हे कार्यक्रम के ठीक बाद समय होगा अल्फा जेन कार्यक्रम का। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कार्यक्रम लेकर सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगी। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो नमस्ते आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आरजे चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। सिगरेट के धुएं, सिगरेट स्मोक ने मानव जाति के लिए कभी भी अच्छा नहीं किया है। इसने लोगों की आशंका और जीवन शैली को सिर्फ अपमानित कर दिया है। लंबे समय से ये एक प्रवृत्ति यानी ट्रेंड के रूप में प्रयोग किया जाता था। तंबाकू, टोबैको से भरे पेपर के एक कटे हुए टुकड़ों को पकड़ना और समाप्त होने के बाद और धुएं को अनकंडीशन मैनर से उड़ा दिया जाता था। एक व्यक्ति को एहसास नहीं हुआ कि प्रभाव इफेक्ट के बाद यह कितना बुरा है। तंबाकू की पत्तियों में मौजूद रसायन जो मस्तिष्क को एक उत्साहित स्थिति में बदल सकती है। निकोटिन जब सिगरेट के माध्यम से श्वास लेता है, फेफड़े के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क के दाहिनी ओर जाता है ताकि इन्हें 10 सेकंड के इनहेलेशन के भीतर दिखाई जाता है। लेकिन जल्द ही आपको एहसास हो जाए कि वापस विथड्रॉल के लक्षण उत्पन्न होने पर आप वास्तव में निकोटीन के आदि हो जाते हैं। और एक बार जब आपका शरीर धूम्रपान यानी स्मोकिंग के दूसरे शॉट के लिए लालच शुरू कर देता है तो आपके लिए रुकने में बहुत देर हो जाती है। असतन धुएं के खतरे के कारण हर साल लगभग 10 लाख लोग मर जाते हैं और भारत दुनिया के धूम्रपान करने वाले में से लगभग 12% है। सही समय पर उचित उपाय नहीं किए जाने पर यह संख्या प्रत्येक गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है और इसके बारे में लोगों को चेतावनी निश्चित रूप में एक बड़ा कदम है। इसके कई कारण है दोस्तों स्मोकिंग एडिक्शन के। धूम्रपान व्यसन यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लिए एकमात्र कारण तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। जब यह सिगरेट स्मोक किया जाता है तो ये रसायन यानी ये केमिकल ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एड्रेनल की रश का कारण बनता है। हमारे दिमाग में पाए जाने वाले हैप्पी हॉर्मोन्स जिसे डोपामिन कहा जाता है, ये निकोटीन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और इस समय एक और स्तर तक पहुंचाते हैं। बस कुछ क्षणों के मजे के लिए यह बेहतर है कि आप अपने पूरे जीवन को जोखिम न दे। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के लक्षण क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा इस लम्हे प्रोग्राम में, तो सुनते रहिए।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूम्रपान की लत के लक्षण ढूंढना काफी आसान है। यदि आप चेन स्मोकर हैं, यदि आपने सामाजिक जीवन से खुद को दूर किया है, अगर सिगरेट छोड़ने के आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, आदत से छुटकारा पाने में कभी देर नहीं होती, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसका आदि न हो। एडिक्शन ने कभी भी अच्छा नहीं किया है, ना तो ये कभी भी होगा। इस लत से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपचार अपने सभी आदि मित्रों से दूर रहना है। दैट मीन्स यू हैव टू अवॉइड ऑल द पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस और सिगरेट एडिक्ट्स। इसके अलावा उन्हें अपने बुरे प्रभाव से अवगत कराएं। तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से परामर्श करें। एक स्वस्थ जीवन शैली है, अच्छा खाओ और लंबे समय तक अच्छी आराम नींद ले। समय परमिट होने पर अपने प्रियजनों के बारे में सोचे। स्मोकिंग की लत के लिए कुछ अन्य उपचार विकल्पों में हिप्नोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम आदि है। निकोटिन की लत के लिए उपचार तरीकों के संयोजन में काम करता है। तो एक के लिए क्या काम कर सकता है जो दूसरे काम नहीं करेंगे। स्मोकिंग एडिक्शन से बचने के लिए प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है, यह आज तक सच है। जब आप जानते हैं कि आप किसके साथ खत्म होने जा रहे हैं, तो इसका आदि क्यों हो। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल रखना हमेशा बेहतर होता है। इस प्रकार की लत के बाद के प्रभाव, आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत डेंजरस।

होते हैं, फेफड़ों के कैंसर, बैड ब्रेथ और अन्य पुरानी विकारें। स्मोकिंग करने की लत के बारे में लोगों को जागरूक करने की ओर रुख करें। लोगों को निकोटिन युक्त उत्पादों का उपयोग करने से रोकें। साथ ही पब्लिक प्लेसेस में निकोटिन के सख्त उपयोगी की दिशा में कुछ मानक नियम यानी नीतियां लागू की जा सकती है। स्कूल और कॉलेज के पास निकोटिन के संबंध में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से धूम्रपान की लत फैलने से रोकने के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। धूम्रपान की लत यानी स्मोकिंग एडिक्शन के निकासे विथड्रॉल के बहुत सारे लक्षण होते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या आप निकोटिन के आदी हैं, इसका उपयोग करना बंद करना है। स्मोकिंग से संबंधित विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शारीरिक निकासी यानी फिजिकल विथड्रॉल सिम्टम्स के लक्षण है। इसमें चिंता, रेस्टलेसनेस, इंसोमिया, हेडेक्स, टेंशन के कुछ मामूली मामले हैं। यदि आप स्मोकिंग करने वाले हैं और एक ही चरण में जा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा प्रोफ्यूस स्वेटिंग, पैनिक अटैक्स, दिल की धड़कन में वृद्धि, ट्रेमर्स, सांस लेने में कठिनाइयां और उल्टी छोड़ने के बाद के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। लेकिन ये ठीक है, किसी भी चीज के लिए ये बहुत देर हो चुकी नहीं है। अपने प्रियजनों के साथ एक खुश भविष्य के लिए आज एक कदम उठाए, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दे। विद दिस वंडरफुल मैसेज, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ। टिल वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुड़ी सृजन, लेकर आई हूँ प्रोग्राम अल्फा जैन। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, जी हाँ शुक्रवार आ चुका है और कल होगा वीकेंड, सैटरडे संडे हम सब एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इस एंजॉय का एक अहम हिस्सा होता है म्यूजिक और डांस। जी हाँ, इसी पर आज मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या फायदा है म्यूजिक सुनने का, डांस सुनने का। आप सभी को पता होगा, लेकिन चलिए ना एक बार फिर म्यूजिक और डांस के और करीब आने के लिए हम याद कर लेते हैं कि क्या क्या फायदे हैं जब आप संगीत के, म्यूजिक के पास होते हैं। देखिए, हम अपने इंसानों की बात करें तो हमारा जिंदगी का संगीत से जो रिश्ता है ना, ये बहुत अटूट और ये बहुत पुराना भी है। जब भी आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, हैप्पी हैप्पी होना चाहते हैं, तो आप संगीत के पास हो जाते हैं। ये रिश्ता कायम कर लीजिए। अगर आप म्यूजिक नहीं भी सुनते हैं तो सुनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा खुश रहने के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप म्यूजिक सुने, जब चाहें जैसा चाहें सुने, और फिर अपना मूड बदल लीजिए। और डांस करने की बात करें तो डांस के भी अपने कई फायदे हैं। फिट रहना चाहते हैं आप, अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ डांस कीजिए। वेट कम करना चाहते हैं, जिम योग के साथ साथ डांस कीजिए। देखिए, ये आपको स्ट्रेस रिलीफ करने के साथ साथ आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग करता है। तो बिल्कुल ये सफर शुरू करते हैं म्यूजिक और डांस के साथ।

लग जा गले से मेरे ठाक करके। अच्छा बताइए कौन कौन था जो ठाक करके नाचने नहीं लग गया था। सुन रही हैं आप रेनबो 102.6 और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी ग्रेस्टर जैन। देखिए नाचो नाचो यानी नाचो नाचो नाचो। ऑस्कर जीता ना हम इंडियंस के लिए अपने आप में ये कितना खुशी का पल था। तो नाच कर सेलिब्रेट करना, नाचना गाना तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। सुन रही हैं आप प्रोग्राम थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अपने वीकेंड के लिए ना नाचने गाने वाला आर्ट जो है ना अलग से सिलेक्ट कर लीजिए और डांस और म्यूजिक को टाइम दीजिए। डांस हमारे कल्चर का हमेशा से हिस्सा रहा है। कोई भी आप रंगारंग कार्यक्रम देख लीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लीजिए, डांस कर नाच कर हम उत्सव को मनाते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिट रहने के लिए और एक्सरसाइज के तौर पर भी डांस करके आप ये जो आलस है ना जो आपको रोकता है कि बिस्तर में पड़े रहे उससे दूर कर देता है, आप फिट रहने के लिए डांस कर सकते हैं। यकीनन ये मजेदार होता है नाचो नाचो नाचो। ऐसे कई गाने हैं जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। भरतनाट्यम, कथक से लेकर टैंगो, सालसा तक कई तरह के नृत्य हैं जिन्हें लोक कला समझकर या

कसरत के रूप में अपने रूटीन में शामिल करते हैं। डांस के कई फॉर्म्स हैं जो कि हमारी हेल्थ, हमारे जो बॉडी की फिटनेस है उसको बैलेंस करते हैं, फैट को हमसे दूर करते हैं। तो वर्कआउट के तौर पर हम जो डांस फॉर्म्स करते हैं उनमें जुम्बा जैसे कि एक फिटनेस प्रोग्राम है, आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स के साथ साथ कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपको फिट कराते हैं। और जब आप जुम्बा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपकी उम्र, आपकी एज क्या हो गई ना, ये कोई गेस नहीं कर सकता। अब बेली डांसिंग ही ले लीजिए, अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग लगता है। और इसमें आपके शोल्डर्स, आपके सभी पार्ट्स लगभग जो है लोअर बॉडी के, वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, कितना अच्छा संतुलन दिखता है ना आपकी स्पीड का, आपके बॉडी का। तो बेली डांसिंग के अपने फायदे हैं, और देखा जाए तो कई प्रूफ्स ये भी कहते हैं, कई बातें ये भी साबित करती हैं कि जब आप बेली डांस करते हैं ना, तो आप अर्थराइटिस जैसी कई प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं। हिप हॉप, जी हाँ, वो डांस जो कि आप कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं ना, जब ढोल बजता है स्ट्रीट बेस रोड या गली मोहल्ले में, तेजी से मूवमेंट करना और अपने बॉडी के हर अंग को हिलाकर नाचना, यानी आपके स्टेप्स की किसी को कोई परवाह नहीं है, बस आप नाच रहे हैं। ये डांस फॉर्म भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस जैसी कई प्रॉब्लम से दूर कर देती है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये हमारा शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो कि अपने आप में हमारे शरीर की भंगिमाओं को, हमारे फेस एक्सप्रेशंस के साथ साथ हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को मूवमेंट देता है। और यहाँ पर जो सबसे खास एक्सरसाइज होती है वो होती है आईज की, यानी आंखों की मूवमेंट के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ भरतनाट्यम को देखना, करना अपने आप में कला को नमन है। कथक ओडिसी भी इसी रेस में है कि आप नाचें, गाएं घुंघरुओं पर उन नृत्यों को अपनी बॉडी के साथ मिलाकर कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो आपको भी खुशी देता है और आपको देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी। सुनते रहिए रेनबो, दिल से दिल तक।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: म्यूजिक मस्ती, नॉन स्टॉप डांस नंबर्स, और हम और आप हो जाते हैं कनेक्ट दिल से दिल तक। रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुड़ी सृजन। म्यूजिक और डांस के क्या क्या फायदे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। देखिए, हमने डांस पर तो बहुत सारी फॉर्म्स पर बात कर ली। अगर म्यूजिक की बात करें तो जो फेमस साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा अगर मेरे पास मेरे जीवन में और समय होता तो मैं कुछ कविताएं पढ़ता और हफ्ते में कम से कम एक बार म्यूजिक सुनने के लिए अपना नियम बना लेता। और कई तो शोध भी ये कहते हैं कि जब आप संगीत सुनते हैं तो अपने शरीर के साथ साथ आप अपने मेंटल हेल्थ को, यानी अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आप म्यूजिक सुनकर खुशमिजाज हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति और बढ़ जाती है, धीरे धीरे आप अपनी बीमारियों से दूर हटकर संगीत की जो राह है उस पर चल देते हैं। तो नियम बनाइए कि थोड़ा सा समय आप अकेले में सबके साथ, जैसे आप कंफर्टेबल हो, म्यूजिक को देंगे और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो लीजिए इसी बात पर ये एक बहुत प्यारा सा ट्रैक जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं, यानी एक वंडरफुल म्यूजिकल ट्रैक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
6: जी हाँ बिल्कुल, बिंदास बोलकर बताइएगा कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, हम कैसे लगते हैं। आप हमारी तारीफें भी कर सकते हैं और कोई शिकायत हो तो दोस्त वो भी सर आंखों पर जरूर बताइए। सुन रहे हैं आप रेनबो 102.6 और साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है अल्फा जैन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। मैं हूँ दिल्ली की चाशनी गुरु सृजन, आपके साथ बात कर रहे हैं कि डांस और म्यूजिक के फायदे होते क्या है, क्यों आप डांस और म्यूजिक सुने। तो देखिए म्यूजिक सुनने के अपने ही कई फायदे हैं जिनमें कि आप यकीन मानिए जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना तो आप अपने इम्यून सिस्टम में भी इजाफा कर रहे हैं। कोविड के बाद से अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, तो इसमें आप ऐड कर लीजिए कि आपको रेगुलर म्यूजिक भी सुनना है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से जो सुकून, जो दिमागी सुकून आपको मिलता है वो आपके ब्रेन फंक्शंस को और बेटर करता है, आपकी क्रिएटिव पावर को और बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है। म्यूजिक रोजाना सुबह शाम सुनने से आप हाई ब्लड प्रेशर, जिन भी लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है उसमें काफी हद तक सुधार की माना जाता है कि सुधार होता है। धीमी गति में म्यूजिक सुनने से आप स्ट्रोक जैसी कई समस्याओं से बच सकते हैं। म्यूजिक जो है वो कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है उसको सुकून देता है और जो स्ट्रोक है उन्हें भी आपसे दूर करता है। आप अपनी बॉडी में कई चेंजेस देखते हैं जब आप संगीत से जुड़ते हैं, वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी होते हैं। मसलन जब आपको लगता है कि आप बहुत चिड़चिड़े रह रहे हैं, कि आपको हर बात पे गुस्सा आ रहा है, तो म्यूजिक को टाइम दीजिए, जो डोज है ना म्यूजिक का उसको अपने में इंजेक्ट कीजिए और आप बेटर फील करते हैं। अच्छा कई लोग ऐसी भी शिकायत करते हैं कि उन्हें अक्सर पीठ में दर्द रहता है और उन्हें जो है ऐसा लगता है कि उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज तेज अब बीट कर रही है। जब आपको लगता है ना तो आप म्यूजिक थेरेपी, जी हाँ आपने सुना होगा, संगीत थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी के जरिए भी आप बैक पेन से रिलीव कर सकते हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। और एक जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है ना म्यूजिक सुनने की, वो है कि ये आपकी याददाश्त को बहुत बेहतर बनाता है। अगर हम अपने टाइम की बात करें यानी 90s की बात करें तो हम अक्सर रेडियो सुनते सुनते अपने क्वेश्चंस को लर्न किया करते थे और यकीन मानिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ हो। जो ये शांत म्यूजिक है, स्लो म्यूजिक जो है ना, आपकी बेटर याददाश्त यानी आप कितना अच्छा याद कर सकते हैं उसको और स्ट्रांग बनाता है, आपके ध्यान में एकाग्रता भी लाता है और नींद। अच्छा हम हमेशा ही मोबाइल चला रहे होते हैं और कहते हैं जब तक नींद नहीं आ जाएगी ना तब तक मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, तो मोबाइल को साइड कर दीजिए, वहीं पर स्लो म्यूजिक चला

वेल देखिए, तरकीबें सही जगह इस्तेमाल हों ये भी बहुत जरूरी है। 102.6 से रेनबो सुन रहे हैं आप। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। बात कर रहे हैं संगीत और डांस के फायदों को लेकर। तो देखिए, तरकीब जैसे मैंने कहा ना, सही जगह यूज करनी है। मैं नींद की बात कर रही थी। तो जब आप सुखद नींद का के लिए लेटे हैं ना, तो आपको आरामदायक सुखदायक म्यूजिक ही सुनना है। अगर यहाँ पर आपने अप्लाई कर लिया ना कि रॉकिंग म्यूजिक हो जाए, तो आपके जो रिजल्ट है ना, वो हो सकते हैं, यानी आपको नींद नहीं आएगी। तो रात्रि में सोते समय आप सुखदायक संगीत सुने, ऐसे में शास्त्रीय संगीत को सुनना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है और आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आउट करता है, जो आपको सोने से रोक रहे हैं। तो चुनिए शास्त्रीय संगीत को जब आप नींद के लिए

आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, संगीत सुनने से यानी म्यूजिक सुनते रहने से आप खाने को लेकर अगर सोचते हैं ना कि म्यूजिक और खाने का क्या कॉम्बिनेशन है, तो देखिए जब आप सॉफ्ट म्यूजिक के साथ डिनर करते हैं ना, तो आपका पेट जल्दी भर जाता है और काफी सेटिस्फेक्शन आपको फील होती है कि आह अब अच्छा खाया है, म्यूजिक था, तो जो आपका कैलोरी कंजप्शन है ना वो भी लिमिटेड हो जाता है, संयम से, यानी लिमिटेड तो नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे संयम ही हो जाता है, ये ठीक रहेगा, वो काफ़ी रिलैक्सिंग फील करता है। और जब आप ऐसे में हड़बड़ाहट में, कई बार ऐसा होता है जब आप स्ट्रेस में होते हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत सारा आपने ऑयली खा लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो उससे बचने के लिए भी आप अपने खाने के साथ साथ म्यूजिक प्ले कर दीजिए। और कई अध्ययन तो ये भी मानते हैं कि संगीत लगातार सुनते रहने से यदि आपके शरीर में कहीं सूजन है तो वो भी दूर होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है, और सर दर्द की समस्या या फिर हेयर फॉल की अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं म्यूजिक सुनते रहने से। और एक और फायदा, एंजाइटी आउट, दो घंटे की म्यूजिक थेरेपी से आप एंजाइटी आउट भी हो जाते हैं। और हमने कहा ना कि याददाश्त बढ़ाने के लिए संगीत सुनना अच्छा होता है, तो वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि डांस करने से आपकी याददाश्त को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही डिमेंशिया की अगर शुरुआत हो रही है तो वहीं स्टॉप हो जाती है। एरोबिक डांस ऐसे में करना आपकी मेमोरी पावर को, हिपोकैम्स को नियंत्रित करता है, जो चीजें हैं आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जा रही हैं, तो डांस वहां पर हेल्प करता है। तो लीजिए इसी बात पे एक और शानदार सा गाना।

दोस्त बेजान, जिंदगी में कोई ना कोई मीत होना चाहिए, और मन का मीत ना हो तो साथ संगीत जरूर होना चाहिए।

0: मीरा का संगीत और कृष्ण का रास हर जगह तो संगीत है, नृत्य है। चाहे दुनिया में कितनी अलग अलग भाषाएं हो जाएं, लेकिन संगीत से अच्छी कोई भाषा नहीं हो सकती जिसे सब समझते हैं। रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन। बात कर रहे हैं कि कैसे डांस और म्यूजिक आपको रिलैक्स कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बात को, इन टॉक्स को कंटिन्यू करते हैं। आप सुनते रहिए रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों,

0: हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जिंदगी का हर पल उत्सव हो जाए, ऐसे कृत्य हो जाएं, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। नृत्य साधना हो या फिर हो संगीत साधना, ये हमें ईश्वर के और नजदीक ले जाती है। ईश्वर की साधना बसती है नाच कर और संगीत के जरिए धुन पर बताकर गाकर। ऐसे में यदि आप डांस करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो आप अपनी हर्ट हेल्थ को और बेहतर बनाते हैं। आपका हृदय सही गति से काम करता है, आपका दिल मजबूत हो जाता है। और दोस्त, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, यानी अगर आप टैंगो डांस करते हैं ना, तो आपने देखा होगा अक्सर बड़ी उम्र के लोग कई बार डगमगा जाते हैं। टैंगो करने से आपके जो मसल्स हैं, आपकी पैरों की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जब आप म्यूजिक यानी डांस करते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं। नाचने गाने से ये जो हैप्पी हार्मोन्स हैं ना, ये आपके चेहरे की खुशी को और बढ़ा देते हैं। और अब शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो वहां जैसे भरतनाट्यम की हमने बात की कि पर आपकी आंखों का जो बैलेंस है, जो आंखों के एक्सप्रेशंस हैं, वो आंखों को की मूवमेंट को लेकर खास रोल प्ले करते हैं। वहीं कथक की बात करें तो पैरों में घुंघरू बांध कर की जाने वाली डांस फॉर्म आपकी कैलोरीज को बैलेंस करती हैं, साथ ही आपके जो हाथ की मसल्स हैं उनको भी बेटर मूवमेंट देती हैं। ओडिसी नृत्य की बात करें तो ये शास्त्रीय नृत्य भी आपको बहुत फायदा देता है, आपकी फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। चलिए, इसी बात पर शनिवार आने वाला है तो ये गाना सुन लेते हैं।

0: यार शनिवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन हो, म्यूजिक और डांस के साथ आप यूं ही बने रहने चाहिए। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, सतरिया हो या फिर भांगड़ा, गिद्दा, गरबा, डांडिया,
1: तू भी गिद्दा वाले चल रंग जमा दे, हमके बने सभी मत वाले।
0: लवनी, घूमर या फिर हो कोई भी ऐसा डांस जो आपको कर दे रिलैक्स। क्लासिकल हो, म्यूजिक या फिर हो बॉलीवुड की अपबीट्स, जो आपको करे रिलैक्स, जो आपको करे अपने करीब। सुनते रहिए FM रेनबो, मैं हूँ दिल्ली की चाशनी कुरेश सृजन।

अगली गुड़िया गुड़िया गल्ला लेकर शैली भाषांजलि आएंगी 5:02 पर। तब तक अपनी दोस्त रजन को दीजिए इजाजत। नाचते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए रेनबो के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है।

0: उन्होंने ऐसा इकोसिस्टम और माहौल बनाने का सुझाव दिया जहां अंतरिक्ष की चर्चा होने पर लोगों का ध्यान भारत की ओर जाए। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। बाद में सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय साहस दिखाने वाले युवा उद्यमियों और नवोन्मेषकों से मिलकर उन्हें खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता किया है। ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। इस बीच संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और अनुकूल डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उधर जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। श्री नड्डा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के निर्देश दिए। महान अभिनेत्री सौकार जानकी का चेन्नई में निधन हो गया है। सौकार जानकी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया। भारतीय महिला टीम आज एम्सफल्टन में FIH हॉकी विश्व के दूसरे चरण में मेजबान नीदरलैंड के साथ खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि

0: इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve lives of people. Mr. Modi noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where, when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers community is of high priority for India. briefing the media. New Delhi spokesperson of the Minister of External Affairs.

0: उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीनां सहकारञ्च वर्धयिष्यत्यपि। पुणे नगरे आयोजितस्य द्वादश ब्रिक्स संप्रेषण मन्त्रिणां सभां निकषा केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्रिणा ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया इत्यनेन ब्राजील देशस्य संप्रेषण मन्त्रिणा फेडरिको डी सिक्विरा फिल्हो वर्येण च सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। आयोजनस्यास्य अध्यक्षः केन्द्रीय संप्रेषण मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वस्य प्रारंभिक भाषणे भारतस्य भविष्यस्य विषये दृढं दृष्टिं निरूपयन् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य डिजिटल इंडिया इत्यभियानं प्रति प्रतिबद्धतया मार्गदर्शितं स्थितिस्थापकं विश्वसनीयं नवान्वेषणं सशक्तिभूतं सर्वसमावेशयुतं च भवतीति भारतस्य दृष्टिकोणं अधोरेखितवान्।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ईरान देशस्य विदेशमंत्री श्री अब्बास अरागची इत्येषः स्वदेशं विरुध्य दत्तान् आर्थिक प्रतिबंधान् निराकुर्वन् उक्तवान् यत् एतादृश्यः विफल नीतयः ईरान जनेषु अधिकां शत्रुतां जनयिष्यन्तीति, अधिकां विफलताम् अपि आनयिष्यन्तीति च। अरागची इत्यस्य इमां टिप्पणीं ट्रम्पेन ईरान विरुद्धं कठोर आर्थिक पदक्षेपोत्थापन रूपेण स्वीकृतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य स्वस्य 25-अधिक-2000 वर्षस्य मे मासिक निर्णये परिवर्तनं कृत्वा प्रवेश स्तरीय न्यायिक सेवा परीक्षासु भागं ग्रहीतुं विधि स्नातकानां कृते पूर्वतनस्य अनिवार्य त्रिवर्षीय विधि अभ्यासस्य आवश्यकतां एकवर्षं यावत् न्यूनीकृतमस्ति। झारखंड उच्च न्यायालयेन JSSCCGL अथ CDPO परीक्षाभ्यः नियुक्ति निरसनस्य राज्य सर्वकारस्य आदेशस्य विषये अंतरिम स्थगनम् अस्थापितमस्ति। याचिकाः न्यायालयस्य पुरतः तर्कं कृतवन्तः यत् विज्ञापनानि नियुक्तयश्च आकस्मिकरूपेण निरसनात्मक सर्वकारस्य निर्णयः विहित नियमानाम् अनुरूपः नासीदिति। औषध विभाग सचिव मनोज जोशी अद्य चिकित्सा उपकरण उद्यम आग्रहत यत् भारतस्य विनियामक संरचनायाः निर्माणे बृहत्तरं निवेशं प्रदातव्यमिति। नवदेहल्यां CII ग्लोबल मेडटेक इत्याख्यं शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्री जोशीवर्यः अवदत् यत् विनियामक चर्चासु उद्योगस्य सहभागिता सम्प्रति परिमिता अस्तीति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सिंगापुर देशेन सह समग्र एशिया खंडेन सह आर्थिक सहयोग प्रगाढ़ीकर्तुं व्यवसाय स्तरे परस्पर सहयोग दृढ़ीकर्तुं च भारत देशस्य प्रतिबद्धतायाः विषये बलं दत्तवान्। तेन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इति व्यवस्थायाः सुदृढ़ीकरणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः च प्रकाशिताः। भारत ऋतु विज्ञान विभाग अद्य पूर्व मध्य प्रदेश अत्यधिक वर्षायै नारंग वर्णीयां संचेतनां प्रख्यापितवान्। अन्ते क्रीडा वार्तासु, भारतस्य काचल ढोचक नामनी द्वंद्व युद्ध क्रीडिका क्रमशः द्वितीय बारं अन्तः 20-वर्षीयाणां महिलानां विश्व द्वंद्व युद्ध स्पर्धायां स्वर्ण पदकं प्राप्तवती। सा निर्णायक द्वंदे चीन देशीयां जिंगरू सन नामनी क्रीडिकां 7-0 पराजितवती इति वार्ताः।
3: प्रिय श्रोता, बातरी पासते उभति आहिছো যুববাণী অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছো যকৃতৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ বিষয়ক শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানটিৰ তৃতীয় খণ্ড। উপস্থিত থাকিব ৰক্ত বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অমৃতাংশু বৰকাকটি, আদ ধৰিব স্নেহা পাঠকে।
4: আমি প্ৰায় শুনো এতিয়া ফেটি লিভাৰ গ্ৰেড 1, গ্ৰেড 2, গ্ৰেড 3, তাৰ পাছত চিৰোচিছলৈ গুচি যায়। এই ফেটি লিভাৰ যেতিয়াই আমি গম পাওঁ, ধৰি লওক গ্ৰেড 1 হ'ল, আমি গম পালো, তাৰ পাছৰ পৰা আমি কিমান সাৱধান হ'ব লাগে বা কি কি খাব লাগে, কি কি খাব নালাগে, এই কথাখিনি?
5: হয় হয়, আপোনাৰ যদি ফেটি লিভাৰ হৈছে গ্ৰেড 1 হওক, 2 হওক, 3 হওক, এনেকুৱা নহয় কি আপোনাৰ লিভাৰটো বেয়া হৈ যাব, দুটা ভাগ আছে। চ' ফেটি লিভাৰ, এটা এলকহলিক ফেটি লিভাৰ, এটা নন এলকহলিক ফেটি লিভাৰ, যোনে ড্ৰিংক কৰি

0: सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध ना तो विद्यार्थियों के हित में है और ना ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today interacted with Chief Executive Officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers' communities is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving 2 foreign-flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being.
3: Two ships which are foreign flagged, they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this and we have 22 Indian nationals and all of them are reportedly safe, but we are looking into the matter, the welfare and safety of our seafarers and seafaring community to which we attach very high importance.
2: On the visit of MEA Secretary

কবজল কবিতা বুলে কি দরে নু মন পড়ে কি দরে আখরে মন ভরে।

धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी।

내생도 다가 멀사이 타김 두막 아까 헐 보라 어저 싫어.

0: শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতেই অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলো হাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলো হাৰ্টজত। কণ্টেক্ট পাছতেই অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थाओं

0: अध्यापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए

0: घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है, उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
3: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन

0: और झांगशू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया,

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।